0: दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89.
2: You're listening to
3: Sufi Hour.
4: Sizni bizni yaratgan, la ilaha illallah.

0: Conquer evil with good. Conquer ignorance with knowledge. Conquer anger with patience. And conquer cruelty with compassion. Imam Ali.
1: It's 9:30 a.m.
2: City FM 89.
3: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Sufi Hour.

0: Conquer evil with good. Conquer ignorance with knowledge. Conquer anger with patience. And conquer cruelty with compassion. Imam Ali.
1: It's 1:30 p.m.
2: We're playing your song.
3: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
4: सिटी एफएम 89।
5: यू आर लिसनिंग टू सूफी आवर।

0: There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. Rumi.
1: It's 4 p.m.
2: City FM 89.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
2: City FM 89.
4: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
5: Brought to you by Dettol.
6: City FM 89. You're listening to Sufi Hour.

0: You were born with wings. Why prefer to crawl through life? Imam Ali.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: We're playing your song.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.

0: जाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89.
2: You're listening to
3: Sufi Hour.

0: Conquer evil with good. Conquer ignorance with knowledge. Conquer anger with patience. And conquer cruelty with compassion. Imam Ali.
1: It's 5:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: City FM 89.
6: You're listening to Sufi Hour.

0: Let the beauty we love be what we do. Rumi.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: We're playing your song.
3: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्स ऑन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्स ऑन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
5: City FM 89.
6: You're listening to

0: yourself a small body, yet encapsulated within you is the entire universe. Imam Ali.
1: It's 6:30 p.m.
2: We're playing your song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Pedio Shore se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taki ye grow kare 50% faster.
6: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है IELTS on Computer, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना IELTS on Computer AEO पाकिस्तान पाकिस्तान's मोस्ट ट्रस्टेड IELTS टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
7: You're listening to City FM 89.
8: You're listening to
9: Sufi Hour.
10: Trusting in Allah will not make the mountains smaller, but will make the climbing easier. Do not ask Allah for a lighter load. Ask for a stronger back instead.

0: खाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89.
2: You're listening to
3: Sufi Hour.
4: You were born with wings. Why prefer to crawl through life?